चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। काल से जी की देख देख फतह, चौकियां चंडे बंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा दी सावे बुलारे। खालसे जिनो नाम दान सुखी दान, गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान। खालसे जिनो श्री हरिमंदर साहिब अमृत सार सरोवर जी दे शनान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे। श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा ढल जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर।

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखहो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती ला।

मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया,

अमिय दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार

जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जा

ताए जाके राखे रही अत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा धारी सदे साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास दे पैसा हत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधो मुख एक पाए ठाढे न बहत है। मानव फनंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेद नेद कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक पहाव करे ओई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपसी आद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गए एक

दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेगी। जैसे एक नद ते तरंग को डूबजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाँगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेगी। केते कछ मच केते उनको करत पच, केते अच वच हो पच उड जाएंगे। केते नब बीजी अच पच कौ करेंगे, पच कीतक प्रतच हो पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के, गौन कहाँ काल के, बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो अतेज मैं तेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेगी। कूकत फिरत किते रोवत मरत, किते जल मैं डुबत, किते आग मैं जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी, किते के उदासी के परमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम मैं गडत, किते

सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अपेखंग अजूनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे पर्यंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अक्षयाद अद्वै विनाशी न जातंग न पादंग न रूपंग न रंगे नमो आद अपंगे नमो आद अपंगे किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाए उसारे गड़े फिर मेटे बनाए अगाधे अभाद अद्वै विनाशी पर्यंग परा परम पूर्ण प्रकाशी न आधंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न मरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंस नेहंस नाते उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाते न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे न सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग न रंकंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग अभूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैव सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अचयादत्व अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अपंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पहायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध विरधंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभायाद अनुक्तंग प्रतापी अयुक्तंग अक्षयाद अविक्ते अथापि विभुक्तंग अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न परमंग न धर्मंग न साकी न भर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाकी न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे।

के कर्म के हरम जाने, कहूँ धर्म के कर्म के परम माने। कहूँ चार चेष्टा कहूँ चतुर रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्व भूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के सुख सुखं कहूँ देह विद्या कहूँ दैत पाने।

खं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तुर्की पारसी हो कहूं पहलवी पश्तवी संस्कृति हो कहूं देश पाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं ओम पूजा कहूं देव चर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या नग कहूं नागबानी कहूं गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूं अछरा पछरा मछरा हो कहूं वीर विद्या भूतन प्रभा हो कहूं छाल छाला तरे छत्र धारी कहूं राजसा जगति राजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्धदाता अचेति अचयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं ग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तो

जय अलग रूप आसन अडोल अमित जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुन जन अनंत कई कल्प जोग साध दुरंत तन सीत काम बरखा सहंत कई कल्प एक सा आस

कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद अभ्यंग अनखंड अछूत अनखंड अभूत अछेद अछयंग अनकाल अपाल दयाल सुंग जटियंग मेरे आकाश पुंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चियंग देव अदेव परंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुखंग जय ताप ना साप ना सोख सुखंग जय रोग ना सोख ना भोग भयंग जय खेद ना भेद ना छेद छयंग जय जात ना पात ना मात पितंग जय रचियंग छत्री छत्र शितंग जय राग ना रेख ना रोग भणंग जय द्वैख ना दाग ना दोग गणंग जय अंडह ते ब्राह्मण रचियो दस चार करी नव खंड सचियो राजताम तेज तेज की अनुभव पदया प्रचंड लियो श्री सिंद्र बेंद नकिंद नगंग श्री जच गंधर फणंद भुजंग रच देव अदेव अपेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सीत दूत भुजंग किए देव अदेव सराध पतंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुहंग जय कृपह किन्नर जाच जवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पाद गणंग भव भूत भविक भवान तवंग जय अंडज जीरज अंडज सीतज जीर रजंग रच भूमि आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बलि बन जास की उफल फूल करी भू अमेर आकाश निवास तंग रच रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सहदीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अन भूत अनतूत अभूत अछूत मतंग अन गाद अप्याद अनाद गतंग अन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेख रुगंग जय सोग ना भोग ना जोग जुगंग हुआ भंजन गंजन याद सिरंग जय बंदत देव देव नरंगण किन्नर जच भुजंग रचि मनमानक मोती लाल सुचि अन भंज प्रभान गंज बिरतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय भेद देव अनंत कहा जय भूत अभूत न भेद लहा जय वेद पुराण कतेव जप सुत।

अदग है अभूत अपरम अपेघ है न तात मात जात है न पात चहन वर्ण है अदेघ असेघ अपेघ है विश्वदि विश्वपर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वपर्ण है जिमी जमान के विखै सदीव कर्म परम है अद्वैख है अभेघ है अलेखनाथ जानी है सदीव सर्वठौर मैं विशेख ज्ञान मानी है न जंत्र मैं न मंत्र मैं न जंत्र मैं न तंत्र मैं न मंत्र बस या वही पुराने या कुरान नीत नीत कह बतावई न कर्म मैं न धर्म मैं न परम मैं बताई है या गंजया।

तृकी विभूत न काम न क्रोध न लोभ है न मोह है न द्वैग है न भीग है न दुई है न ध्रुव है न काल है न ब्याल है न सदीव दयाल रूप है अगंज है अपंज है परम है अभूत है अछेद छेद है सदा अगंज गंज गंज है अभूत अपिग है बली अरूप राग रंग है न द्वैग है न भीग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न

दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा, कहां रंग राजा कवन कर हर हरक सोग है कवन को, रोगी रागी कवन कहो तत्व मोह तवन दोहरा। कवन अरिष्ट को पुष्ट है कहां श्रेष्ठ को विचार, कवन सृष्ट को पृष्ठ है कहो।

विश्व विध्वंसन सृष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्नतन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले। दानवी पर करखण सर्वर वरखण दुष्ट पर धरखण बितल तली। अष्टायत बाहन बोल बाहन संत पनाहन गूढ़ गति। जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद नाद अगाध वृत्ति। दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण।

अत्र के चलैया चित छत्र के तरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया कटैया जा मजाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूं के मान है। ज्ञान हूं के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय द्यावे गुरु कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधा पवन साधना कतेक पाते यार पके यार भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मानक अंधारी कुरेसी जान पच्छम के पच्छमी पछाना निज काम है। मरहटा मघिल तेरी

देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कही अत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पैर अधीन साध अधीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राव कही अत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दही अत है। केते महादीन केते ब्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच्छ कही अत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहीं ते अपार निराधार लही अत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कै बखानिया। अद्वै विनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कह मानिया। जंत्र हूं न जात जागी बाप हूं न माए ताकि पूरन प्रभागी सो छटा कह न मानिया। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है।

अभिभूत है, कि क्रुद्ध को अभूत है, कि अच्छे अभिनाशी है, काम को गुरिंदा है, के खूबी को दिहंदा है, के नीमन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल हूं के काल है, के सतरण के साल है, के स्मित्रण को पोगत है, के वृद्धता की बासी है, जोग हूं को जंत्र है, के तेज हूं को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को पास है, के

है निरंजन अभिवनाथ द्वै विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है कि शिव के अधीन है कटैया जम जाल की देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के पुजैया मुहैया महाबाल के राजन के राजा महाराज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है तरिया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा बद छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंसनी सी सियारू हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तार चली सातु सिंध रूल के पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही चूल के चंपा सी चंदेनी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोही यतहा हिमा सी हिमाल हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही यतहा चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोही यतहा गंगा साम गंग तार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोही यतहा फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई गाई यतहा पखरी गंदारी गोर गख

जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया।

खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा।

लिहु उबारे, कबियो बाच बिनती चौपई, हमरी करो हाथ दरछ, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो पतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभय कर तारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संघरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरन काल का त्रास नवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जूं करियो रच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पपधरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

जिन आप सवारी सेवकण को सेव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचरिय स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी भूज उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका।

कछ भेद ना जानत, महादेव कहो कहत सदा शिव निरंकार का छीनत नह भव। आपनी बुद है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उतभुज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ समट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अवरछा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे सुधुजतौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जावन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध घर मुँह सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई।

कह चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादौ सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत। स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए।

हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सब ना गलां सुमरत स्वामी सो क्या मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा।

घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शाम सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुरु विटो, जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, सचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द घर सभाग, घर सभाग शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत

अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साज